0: मत भागो और जिन नेमतों में तुम ऐशो आसाइश करते थे उनकी और अपने घरों की तरफ लौट जाओ, शायद तुमसे इस बारे में दरियाफ्त किया जाए।
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ
0: कहने लगे, हाय शामत, बेशक हम जालिम थे।
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ
0: तो वो हमेशा इसी तरह पुकारते रहे यहाँ तक कि हमने उनको खेती की तरह काट कर और आग की तरह बुझा कर ढेर कर दिया।
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
0: और हमने आसमान और जमीन को और जो मखलूकात इन दोनों के दरमियान है उसको लहूलुआब के लिए पैदा नहीं किया।
1: لو

0: और कहते हैं कि खुदा बेटा रखता है, वो पाक है, उसके न बेटा है न बेटी, बल्कि जिनको ये लोग उसके बेटे बेटियां समझते हैं वो उसके इज्जत वाले बंदे हैं।
1: ला यस्बिकूनहु बिल्कौल वहुम बिअम्रिही यअमलून,
0: उसके आगे बढ़कर बोल नहीं सकते और उसके हुक्म पर अमल करते हैं।
1: यालम मा बैन अईदीहिम वमा खल्फ,

जो कुछ उनके आगे हो चुका है और जो पीछे होगा वो सबसे वाकिफ है, और वो उसके पास किसी की सिफारिश नहीं कर सकते मगर उस शख्स की जिससे खुदा खुश हो, और वो उसकी हैबत से डरते रहते हैं।

और हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि लोगों के बोझ से हिलने और झुकने न लगे, और इसमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि लोग उन पर चलें।

0: और वही तो है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को बनाया। ये सब यानी सूरज और चांद और सितारे आसमान में इस तरह चलते हैं गोया तैर रहे हैं।
1: वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफइन मित्तफहुमुल खालिदून।
0: और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमसे पहले किसी आदमी को बकाए दवाम नहीं बख्शा, भला अगर तुम मर जाओ तो क्या ये लोग हमेशा रहेंगे।
1: कुल

0: क्या हमारे सिवा उनके और माबूद हैं कि उनको मसाइब से बचा सकें? वो आप अपनी मदद तो कर ही नहीं सकेंगे और ना हमसे पनाह ही दिए जाएंगे।
1: बल मत्ता उलाई व आबाहुम हत्ता ताला अला

0: इब्राहिम ने कहा कि तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी सरीह गुमराही में पड़े रहे।
1: قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ
0: वो बोले, क्या तुम हमारे पास वाकई हक लाए हो या हमसे खेल की बातें करते हो।
1: قَالَ

0: इब्राहिम ने कहा कि फिर तुम खुदा को छोड़कर क्यों ऐसी चीजों को पूछते हो जो न तुम्हें कुछ फायदा दे सकें और न नुकसान पहुंचा सकें।
1: उफ़िल्लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि अफला तअक्लून।
0: तुफ है तुम पर और जिनको तुम खुदा के सिवा पूछते हो उन पर क्या तुम अक्ल नहीं रखते।
1: قالوا

ये वो लोग हैं कि जब खुदा का नाम लिया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन पर मुसीबत पड़ती है तो सब्र करते हैं और नमाज आदाब से पढ़ते हैं, और जो माल हमने उनको अता फरमाया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं।

الأرض يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئ

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: सामईन, वक्फे के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। तुफैल बिन अमरू दौसी, ये शरीफ इंसान, शायर, सूझबूझ के मालिक और कबीला दौस के सरदार थे। उनके कबीले को बाज नवाही यमन में अमारत या तकरीबन अमारत हासिल थी। वो नबूवत के 11वें साल मक्का तशरीफ लाए तो वहां पहुंचने से पहले ही अहले मक्का ने इनका इस्तकबाल किया और नहायत इज्जत और एहतराम से पेश आए। फिर उनसे अर्ज परदाज हुए कि ऐ तुफैल, आप हमारे शहर तशरीफ लाए हैं और ये शख्स जो हमारे दरमियान है उसने हमें सख्त पेचीदगी में फंसा रखा है। हमारी जमीयत बखेर दी है और हमारा शहराजा मुंतशिर कर दिया है। इसकी बात जादू का सा असर रखती है कि आदमी और इसके बाप के दरमियान, आदमी और उसके भाई के दरमियान और आदमी और उसकी बीवी के दरमियान तफरका डाल देती है। हमें डर लगता है कि जिस इफ्तदा से हम दो चार हैं, कहीं वो आप पर और आपकी कौम पर भी ना आन पड़े। लिहाजा आप इससे हरगिज़ गुफ्तगू ना करें और इसकी कोई चीज ना सुने। हजरत तुफैल रजी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है कि ये लोग मुझे बराबर इसी तरह की बातें समझाते रहे, यहाँ तक कि मैंने तहैया कर लिया कि न आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की कोई चीज सुनूंगा और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से बातचीत करूंगा। हत्ता कि जब मैं सुबह को मस्जिद हराम गया तो कान में रुई ठोंस रखी थी कि मुबाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की कोई बात मेरे कान में न पड़ जाए, लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बाज़ बातें मुझे सुना ही दे। चुनाचे मैंने बड़ा उम्दा कलाम सुना। फिर मैंने अपने जी में कहा, हाय मुझ पर मेरी माँ की आहो फगा, मैं तो बाखुदा एक सूझबूझ रखने वाला शायर आदमी हूँ, मुझ पर भला बुरा छुपा नहीं रह सकता, फिर क्यों ना मैं उस शख्स की बात सुनूं, अगर अच्छी हुई तो कबूल कर लूंगा, बुरी हुई तो छोड़ दूंगा। ये सोचकर मैं रुक गया और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम घर पलटे तो मैं भी पीछे हो लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए तो मैं भी दाखिल हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को अपनी आमद का वाकया और लोगों के खौफ दिलाने की कैफियत, फिर कान में रुई ठूंसने और इसके बावजूद आपकी बाज बातें सुन लेने की तफसीलात बताई। फिर अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अपनी बात पेश कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने मुझ पर इस्लाम पेश किया और कुरान की तिलावत फरमाई। खुदा गवाह है मैंने उससे उम्दा कौल और उससे ज्यादा इंसाफ की बात कभी ना सुनी थी। चुनाचे मैंने वहीं इस्लाम कबूल कर लिया और हक की शहादत दी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मेरी कौम में मेरी बात मानी जाती है, मैं उनके पास पलट कर जाऊंगा और उन्हें इस्लाम की दावत दूंगा। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ फरमाएं कि वो मुझे कोई निशानी दे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। हजरत तुफैल को जो निशानी अता हुई वो ये थी कि जब वो अपनी कौम के करीब पहुंचे तो अल्लाह ताला ने उनके चेहरे पर चराग जैसी रोशनी पैदा कर दी। उन्होंने कहा, या अल्लाह, चेहरे के बजाय किसी और जगह, मुझे अंदेशा है कि लोग इसे मशला कहेंगे। चुनाचे ये रोशनी उनके डंडे में पलट गई। फिर उन्होंने अपने वालिद और अपनी बीवी को इस्लाम की दावत दी और वो दोनों मुसलमान हो गए। लेकिन कौम ने इस्लाम कबूल करने में ताखीर की, मगर हजरत तुफैल रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मुसलसल कोशा रहे। हत्ता कि गज़वा खंदक के बाद जब उन्होंने हिजरत फरमाई तो उनके साथ उनकी कौम के 70 या 80 खानदान थे। हजरत तुफैल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम में बड़े अहम कारनामे अंजाम देकर यमामा की जंग में जामे शहादत नोश फरमाया। ज़िमाद अज़दी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये यमन के बाशिंदे और कबीला अज़द शनों के एक फर्द थे। झाड़ फूंक करना और आसेब उतारना इनका काम था। मक्का आए तो वहां के अहमकों से सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पागल हैं। सोचा, क्यों ना इस शख्स के पास चलूं, हो सकता है अल्लाह मेरे ही हाथों से इसे शिफा दे दे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से मुलाकात की और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, میں آسیب اتارنے کے لیے جھاڑ پھونک کیا کرتا ہوں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کی ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، یقیناً ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں، جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ زماد نے کہا، ذرا اپنے کلمات مجھے پھر سنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین بار دہرایا۔ اس کے بعد زماد نے کہا، میں کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جیسے کلمات کہیں نہیں سنے، یہ تو سمندر کی اتھا گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں۔ لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام پر بیعت کروں، اور اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ سامعین، اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کرتے ہیں، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, we are live now.
1: बहुत हो गया, बहुत लड़ लिया, बस अब हमें और तुम्हें मिलकर आगे बढ़ना है।

0: पाकिस्तान का नाम रोशन करना। जाग जाग जाग जाग जा। पाकिस्तान जाग जाग।
1: Let's get stress free. Tune into FM 92.6 UCP की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.ek FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले मिस यक्षी से, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, कैसा रहा उनका टीचिंग एक्सपीरियंस, उन्होंने कैरियर कैसे चूज किया और किस तरह से फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन को देख रही हैं वो इन फ्यूचर। अब मैं मैम अगर आपसे बात करूँ, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे डेडलाइंस के बारे में, कि डेडलाइंस को मीट करना इज वेरी लाइक चैलेंजिंग, तो ऐसा कौन सा चैलेंजिंग टास्क है जो भी आप परफॉर्म कर रही हैं जिसमें आपको डेडलाइंस मीट करना खुद में ही एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी भी लगती है, चैलेंज भी लगता है और खुद में ही एक बहुत बड़ा एडवेंचर भी लगता है कि इसको हर हाल में करना है टाइम से?
2: वेल, फैकल्टी का जो स्ट्रेटेजिक प्लान है उसको फॉलो करना और उसकी डेडलाइंस को मीट करना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है। अभी जो 10 ईयर्स का मेरा करियर है उसके अंदर तकरीबन 2 साल पहले मुझे जिम्मेदारी दी गई थी और इसमें मैं अगर देखूँ तो हम साल पहले ही फैकल्टी के कुछ टारगेट्स डिफाइन कर देते हैं कि हमने कौन से मंथ में कौन सा टारगेट अचीव करना है। उसमें रिसर्च के टारगेट्स भी हैं, उसमें हमारी उसमें पब्लिकेशंस के टारगेट्स भी हैं, उसके अंदर हमारी कम्युनिटी अवेयरनेस के टारगेट्स हैं, ग्लोबलाइजेशन के हैं, एकेडमिक इनिशिएटिव्स हैं। सो हर मंथ जो हमने डिफाइन किया हुआ है उसी मंथ में वो सारे काम करना और उन डेडलाइंस को मीट करना, वो टास्क परफॉर्म करना, वो टारगेट अचीव करना इटसेल्फ बहुत चैलेंजिंग है। बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स बल्कि पूरी फैकल्टी की सपोर्ट इसमें मेरे साथ होती है। जिस फैकल्टी मेंबर को आज तक जो भी टास्क असाइन किया उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म किया। हाँ, लेकिन यह है कि इनकी रिपोर्ट्स कंपाइल करना और उसके बाद फिर वो सारा कुछ कंपाइल करके एक हमारी हर क्वार्टर के एंड में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है प्रोडक्टर साहब के साथ जिसमें हम अपनी प्रोग्रेस उनको बताते हैं। सो वो सारी डॉक्यूमेंटेशन करना और टाइमली सारे काम को परफॉर्म करना जो है इटसेल्फ बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन साथ ही साथ ये एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस भी है। मैं अगर अपनी जाती लर्निंग के हवाले से बात करूं तो इसमें जो बजट मैनेजमेंट है वो मुझे आई। इसके अलावा मैंने अपने टास्क जो जिंदगी के थे उनको प्लान करना शुरू किया, मेरी लाइफ ज्यादा डिसिप्लिन हो गई। और इसके अलावा जैसे हम स्ट्रेटेजिक टारगेट्स डिफाइन करते हैं इसी तरह मैंने भी ये सीखा कि अपने कुछ टारगेट्स अगर जिंदगी में डेली बेसिस पे भी अगर हम डिफाइन कर लें तो हमारा दिन बहुत प्रोडक्टिव गुजरता है। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस।
1: और मैम अगर लिसनर्स ये जानना चाहें कि स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे?
2: वेल, जैसे स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं इस तरह स्ट्रेटेजिकली हम एक साल का प्लान बना लेते हैं कि हमने नई स्ट्रेटजीज अपनी फैकल्टी को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए क्या स्ट्रेटजीज अपनानी है, हमने एकेडमिक इनिशिएटिव्स कौन से लेने हैं, तालीम को कैसे बेहतर बनाना है, अगर कहीं हम लैक कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमें इक्विपमेंट नया चाहिए, हमने अपनी लैब्स को अपग्रेड करना है, हमने अपने टीचर्स की ट्रेनिंग करनी है, हमने स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करनी है, तो वो सारी प्लानिंग जो है हम हमारा जो मार्च और अप्रैल का महीना है उसमें हम बैठ के ये प्लानिंग कर लेते हैं और इसमें हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना बजट हमें दरकार होगा रिसोर्सेज के लिए, जितने भी उसके लिए हमें इक्विपमेंट चाहिए या जो भी हमें उसकी नेसेसिटीज हैं वर्कशॉप्स की ट्रेनिंग्स की, तो उसको हम प्लान आउट करके एक टाइमलाइन क्रिएट कर देते हैं। एक एक्सेल शीट के ऊपर हम टाइमलाइन क्रिएट कर देते हैं मंथ वाइज ताकि हमें अंदाजा हो कि हमने कौन से मंथ में क्या काम करना है। जब प्लान हमने किया होता है हमें पता होता है कि इतना बजट है, हम कितना इन्वेस्ट करेंगे, कितना बच सकता है, तो हम ज्यादा आसानी से उन टारगेट्स की तरफ जा सकते हैं और ज्यादा आसानी से उन टारगेट्स को हम मीटअप कर सकते हैं। सो स्ट्रेटेजिक प्लान जब से हमने बनाना शुरू किया है तब से मैं देखती हूँ कि हमारी फैकल्टी की प्रोग्रेस जो है वो ज्यादा हो गई है। अगर मैं बात करूँ रिसर्च के हवाले से तो रिसर्च में ज़ाती तौर पे पहले ऐसा होता था कि अगर किसी ने पब्लिकेशन करनी है तो फैकल्टी मेंबर्स करते थे, लेकिन अब चूंकि टारगेट है कि आपने लेट्स सपोज 10 पब्लिकेशंस हैं वो करनी ही करनी है, तो उस टारगेट को मीट करने के लिए आप 7 तक तो कम से कम जाते हैं। और बाज़ूकात ऐसा भी होता है जो हमारा पिछला स्ट्रेटेजिक प्लान था उसमें हमने अपने टारगेट से बहुत ज्यादा अचीव किया था। हमारा टारगेट तकरीबन 26 रिसर्च पब्लिकेशंस का था जिसमें कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशंस थी, पब्लिकेशंस थी, इंपैक्ट फैक्टर जर्नल थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 91 का टारगेट अचीव किया। सो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक प्लान जो था वो 2023-24 का था जो कि जिसमें हमारी फैकल्टी ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की।
1: दैट्स सच एन अचीवमेंट, बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के कि हमने एक टारगेट सेट किया और फिर हमने उस टारगेट को तोड़ के खुद एक नया टारगेट। अच्छा मैम, जो स्ट्रेटेजिक प्लान है क्या इसका कोई फ्लो चार्ट, मैंने जो समझा अभी तक यही है कि एक फ्लो चार्ट है जिसके मुताबिक हमने क्या क्या कैसे कैसे करना है, प्लानर हमारा बन गया और हम उस तरह कर रहे होते हैं, तो क्या इसके कुछ पिलर्स हैं जिसके अंडर आप चीजों को अचीव जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं?
2: बिल्कुल, इसमें डिफाइंड कुछ पिलर्स हैं, जैसे एक्सपैंड एंड स्ट्रेंथन एकेडमिक इनिशिएटिव्स हैं, उसके अंदर हम लोग अपनी लैब्स को अपडेट करते हैं, हम टीचर्स की हायरिंग करते हैं, हम इसके अंदर अपनी टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं, स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करते हैं। कोई नया एकेडमिक इनिशिएटिव है, जैसे कि इस साल हम कम्युनिकेशन गाला ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, वो हमने किया। इस साल हमने एक नई ट्रेनिंग जो है AI को इनकॉर्पोरेट करते हुए फैकल्टी मेंबर्स की ट्रेनिंग करवाई, ताकि AI को पॉजिटिव वे में वो यूज करके अपने स्टूडेंट्स को जो है हेल्प आउट कर सकें कि वो AI का इस्तेमाल करते हुए एकेडमिकली अपने जो लर्निंग है उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास रिसर्च का टारगेट होता है, जिसमें डिफाइंड होता है कि स्टूडेंट्स कितनी पब्लिकेशंस करेंगे, टीचर्स कितनी करेंगे, उसके तहत हम लोग रिसर्च ग्रुप बनाते हैं। और रिसर्च ग्रुप में यह है कि जिन लोगों को रिसर्च में जो वीक हैं, तो जो स्ट्रांग रिसर्चर्स हैं वो उन्हें गाइड करते हैं कि वो अपनी रिसर्च को, जो टीचर्स वीक हैं वो अपनी रिसर्च को बेहतर कैसे कर सकते हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि जो प्रोफेशनल ट्रैक के टीचर्स हैं वो प्रोफेशनली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो जब हम ग्रुप्स बनाते हैं तो उससे यह होता है कि जो प्रोफेशनली स्ट्रांग टीचर्स हैं वो रिसर्चर्स को अपनी स्किल्स जो है शेयर करते हैं, और रिसर्चर्स जो है वो प्रोफेशनली स्ट्रांग टीचर्स को अपनी जो स्किल्स हैं शेयर करते हैं, जिससे एक म्यूचुअल लर्निंग का प्रोसेस जो है वो जारी रहता है। इसके अलावा हमारे पास थर्ड पिलर जो है उसमें स्टूडेंट जो ग्रेजुएट्स हैं हमारे, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के लिए हम काम करते हैं, हम रिक्रूटमेंट ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके अलावा हम इंडस्ट्रियल लिंकेजेस को स्ट्रांग करते हैं, हम इंडस्ट्री से लोगों को इन्वाइट करते हैं कि वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें, उन्हें इंडस्ट्री में होने वाली हैपनिंग्स के हवाले से बताएं, और जो इंडस्ट्री में जब हमारा बच्चा जाएगा तो उससे क्या एक्सपेक्टेशन की जाएगी इसके हवाले से उनको बताएं। तो बहुत सारी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं बच्चों की, और उनको CV डेवलप करने में हेल्प आउट किया जाता है। इसके अलावा हमारी फैकल्टी का एक और 6th पिलर है, जिसमें कम्युनिटी अवेयरनेस के हवाले से हम काम करते हैं। क्योंकि हमारा ताल्लुक मीडिया से है, तो हम उसमें जो हमारे रेडियो के प्रोग्राम्स हैं, हमारे टेलीविजन जो स्टूडियो है उसके प्रोग्राम्स हैं, उसके कुछ टारगेट सेट हैं कि हमने कम्युनिटी के लिए क्या सर्व किया है। तो कम्युनिटी के लिए हम स्पेशली उसमें प्रोग्राम्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स को एक टास्क असाइन किया जाता है कि स्टूडेंट्स आजकल जैसे डिजिटल मीडिया का दौर है, तो स्टूडेंट्स भी जो हैं कुछ ना कुछ कोई रील्स बनाएं, कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाएं, ताकि वो भी जब डिजिटल मीडिया पे जाएं तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट प्ले करें हमारी सोसाइटी में। सो ये सारे के सारे जो 6 पिलर्स हैं, इनके तहत पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान बनता है, जिसके अंदर से सारे काम जो है हम पूरे एक साल में करते हैं।
1: और ये सबके सभी खुद में एक बहुत बड़ा टारगेट है, उनको अचीव करना, चीजों को लेकर चलना, स्पेसिफिकली ये देखना कि स्टूडेंट्स जो यहाँ से ग्रेजुएट हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट क्या है, और कितने बच्चे जो है वो प्रोफेशनल लाइफ में है, कितने एकेडमिया को फर्दर परस्यू कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे आप बता रही थी कि डिफरेंट तरह के इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करवा रहे होते हैं, सो ये सच में एक अचीवमेंट है जिसको आप जैसे देख रही हैं, और जितनी इस पे मेहनत हो रही है वो सुन के ही मैं बहुत वो हैरान भी हो रही हूँ और खुशी भी हो रही है कि FMMC हर तरह से टारगेट को मीट करने के लिए अपनी एक टीम के साथ एक बेहतर तरीके से काम कर रहा है और कोशिश की जा रही है कि बेहतर से बेहतर हम परफॉर्म करें। सो मैम, जैसे अभी आप स्ट्रेटेजिक प्लान की बात कर रही थी, तो क्या हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी हम इवेंट्स जो रख रहे होते हैं वो अभी स्किल्स इनहांस करने के लिए या उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, उनके टारगेट्स जो वो मीट करना चाहते हैं उसके लिए कोई ऐसा इवेंट है जिससे वो सीख सकते हैं?
2: बिल्कुल, हर साल हम कुछ ना कुछ नया करते हैं, और इस साल हमने सोचा कि हम स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिकेशन गाला ऑर्गेनाइज करते हैं। कम्युनिकेशन गाला एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर हमने स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी कि वो मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर कम्युनिकेशन रिलेटेड जो है स्किल्स वो अपनी डिस्प्ले करें। इसमें सिर्फ मीडिया के स्टूडेंट्स नहीं है, इसमें पूरी UCP के स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये इवेंट जो है इसमें रील्स का कॉम्पिटिशन है, इसमें न्यूज एंकरिंग का कॉम्पिटिशन है, इसके अंदर TVC का कॉम्पिटिशन है, इसमें पोस्टर मेकिंग का कॉम्पिटिशन है। ये वो कॉम्पिटिशन हैं जो कि स्टूडेंट्स यूजली अपने शौक को पूरा करने के लिए भी कर रहे होते हैं, नो मैटर उनका ताल्लुक फार्मेसी से है, इंजीनियरिंग से है, किसी भी डिसिप्लिन से है। लेकिन कम्युनिकेशन की जो स्किल है और कम्युनिकेशन बेस्ड आर्ट हर इंसान में होता है, सो अपनी इस स्किल को, अपने इस आर्ट को इन्हांस करके अगर वो किसी कम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें और विन करें, तो स्टूडेंट को एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है और वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होती हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि तमाम UCP के स्टूडेंट्स के लिए हम ये एक इनिशिएटिव रखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल स्ट्रेटेजिक प्लान में हमने इनिशिएटिव रखा है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स जो है इससे बेनिफिट लेंगे।
1: ऐसे ही है, और मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं किसी भी तरह से कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करें। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा, जो हमारे प्रोफेशनल स्टडीज के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो स्पेसिफिक फील्ड में जो है वो एक्सपर्टीज ले रहे हैं, स्पेसिफिकली उनकी स्पेशलाइजेशन है या वो MPhil में आ रहे हैं, उनके लिए फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन ऐसा क्या ऑफर कर रहे हैं जो बाकी मीडिया फैकल्टीज नहीं ऑफर कर रही?
2: सबसे स्ट्रांग चीज का जो मैं जिक्र यहाँ पे करूंगी मास्टर्स प्रोग्राम के हवाले से, वो उसका रोड मैप है। जैसा रोड मैप यहाँ फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन ने डिजाइन किया है, इस तरह का रोड मैप आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। अप टू डेट यहाँ पे कोर्सेज हैं, रिसर्च भी इंक्लूडेड है, प्रोफेशनल और टेक्निकल स्किल्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो ये है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो है मास्टर्स प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। इसके अलावा सेकंड चीज की तरफ अगर मैं आऊं, तो वो इसमें ऑफर की जाने वाली स्कॉलरशिप्स हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको 50% स्कॉलरशिप दी जा रही है, और अगर आप इसके अलावा अगर आप अच्छे आपके ग्रेड्स हैं आपके बीएस में तो उसके हवाले से अपनी स्कॉलरशिप्स हैं। इनकी सारी डिटेल्स जो है यूसीबी के वेबसाइट पर मौजूद हैं, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं हमारे मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए वो वेबसाइट से कंसल्ट कर सकते हैं। सो बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है, एंड आई एम श्योर जो भी जो स्टूडेंट्स इसका हिस्सा हैं, और अगर कोई स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा लेना भी चाहते हैं, इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, वो अगर इसका हिस्सा बनेंगे तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
1: अच्छा, मैं तो बात करके बहुत मज़ा और बहुत इंजॉय कर रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। सो यही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं। आप लोग सुन रहे हैं FM 92.6 प्रोग्राम फैकल्टी आर। मैं हूँ मरियम इरशाद, लेक्चरर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन।

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। और आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट हैं प्रिंसिपल लेक्चरर मिस यक्षी सलीम, फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन। और अभी हम उनसे बड़े मजे मजे की गुफ्तगू कर रहे थे और उनसे मैं पूछ रही थी कि प्रोफेशनल लाइफ और प्रोफेशनल स्टडीज जो है वो किस तरह से मैनेज करते हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स। तो मैम मुझे ये बताइएगा कि जो प्रोफेशनल स्टडीज के स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल ट्रैक के स्पेसिफिकली, उनके लिए इस फील्ड में आने के लिए क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो उनको बहुत जरूरी रखनी चाहिए कि जब वो इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको अपने आप को इस स्पेसिफिक वे में जो है वो हर तरह से अचीवेबल, टारगेट अचीवेबल भी बनाना है और उनको अपने आप को इस तरह से वेल ग्रूम करना है।
2: वेल, सबसे पहली बात तो मैं उन्हें कहूंगी कि डेडिकेशन स्ट्रांग करें। अगर आप मीडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, चाहे आप फिल्म मेकिंग में जाना चाहते हैं, चाहे आप ब्रॉडकास्टिंग के अंदर जाना चाहते हैं, आपको अपनी डेडिकेशन स्ट्रांग करनी पड़ेगी। आप डेडिकेटेड हैं अपने प्रोफेशन की तरफ तो ही आप आगे बढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे, डेडलाइंस को मीट सकेंगे। क्योंकि अगेन कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिंदगी में जहां पर डेडलाइंस और जहां पर आपकी मौजूदगी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और एंड मीडिया इज वन ऑफ देम। सो जब भी आपने इंडस्ट्री में जाना है, यू हैव टू बी देयर। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिविटीज को जो है वो जिंदगी से निकाल दें, वो आपको बेहतर इंसान बनने में भी मदद देगा और आपको प्रोफेशनली भी ग्रो करने में मदद देगा। सो इसलिए ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि अपनी जिंदगी का अहम एक हिस्सा होना चाहिए। और तीसरी चीज ये कि अपने आप को अप टू डेट रखें, आपके इर्द गिर्द की हैपनिंग्स हैं, न्यूज जो है उनसे आपका ताल्लुक होना चाहिए, चाहे आप फिल्म मेकिंग में हैं या चाहे ब्रॉडकास्टिंग के अंदर हैं। अगर दुनिया में क्या हो रहा है, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है आपको नहीं पता और आपको जाके ऐसे ही प्रोफेशन में काम करना है तो आप मीट नहीं कर पाएंगे उस प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट्स को, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। सो अखबार पढ़ने की आदत डालें। और आजकल जैसे डिजिटल मीडिया का दौर है, आजकल हम देखते हैं कि खबरें हमें सोशल मीडिया के थ्रू ही ज्यादा मिलती हैं। सो सोशल मीडिया पर सिर्फ हमने स्क्रोलिंग नहीं करनी, हमने पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भी लेनी है और नॉलेज भी गेन करना है। मैं एक बात हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ क्लासेस में भी कि जितने अच्छे अल्फाज आप पढ़ते हैं वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाते हैं। वही अल्फाज कहीं ना कहीं से आपकी राइटिंग्स में, आपकी गुफ्तगू में झलकते भी हैं। सो अच्छा पढ़ें ताकि आप अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा लिखें।
1: अच्छा मैम, जैसे अभी बात कर रहे थे रीसेंट ट्रेंड्स की कि अभी सोशल मीडिया का टाइम पीरियड है और चीजें बहुत ज्यादा हो रही है, हम देखते हैं हर तरह से आपके पास डिफरेंट तरह की न्यूज भी आती है, हमारे पास फेक न्यूज बहुत ज्यादा आती है, इसमें मीडिया कितना रिस्पॉन्सिबिली जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है?
2: देखिए, हर मीडियम के स्टार्ट में लोगों को टैकल करना जो है और इन्फॉर्मेशन को टैकल करना चैलेंजिंग होता है। हम मीडिया हिस्ट्री भी जब देखते हैं तो जब भी कोई मीडियम, किसी भी मीडियम का आगाज होता था तो हमें बहुत सारी थेरीज ऐसी देखने को मिलती हैं कि लोगों के लिए उसको अडेप्ट करना और बाद में उसको फिर मॉनिटर करना जो है वो बहुत चैलेंजिंग रहा। सेम इज द केस विद सोशल मीडिया, क्योंकि अभी इसमें मॉनिटरिंग जो है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो फेक न्यूज का जैसे आपने जिक्र किया, बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। उसमें यही है कि फैक्ट चेकिंग जो है, इजी फैक्ट चेकिंग जो है उसको पॉसिबल बनाया जाए। जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं वो तो इसको देख ही सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब हम मीडिया के स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, हम मीडिया का हिस्सा हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन लोगों को गाइड किया जाए जो कि इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। चेक कर लिया जाए न्यूज को, एक दफा फैक्ट चेकिंग कर ली जाए, हम ओरिजिनल वेबसाइट्स पर जा सकते हैं, ओरिजिनल सोर्सेज को देख सकते हैं और वेरिफिकेशन के बाद ही हम उसको अपने जो जाती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर शेयर करें, उसको डिसेमिनेट करें, ताकि गलत इन्फॉर्मेशन हम खुद ही गेट कीपिंग उसकी कर लें, हम लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंचाएं। सो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको अगर हम खुद देखें तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ये कंट्रोल हो जाएगी।
1: और मैम जैसे AI का टाइम पीरियड है, हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स में, देखती हूँ कि यूजुअली स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प लेते हैं ChatGPT से और डिफरेंट अदर सॉफ्टवेयर से जिनको आप सिर्फ कमांड दे रहे हो और आप उनसे अपने लिए वीडियोज भी बना रहे हो। तो एज ए टीचर कितना चैलेंजिंग हो गया प्रोफेशनल ट्रैक के स्टूडेंट्स को टीच करना और उनको AI से हेल्प लेने का कहना, लेकिन AI की मदद से सबका सब प्रोजेक्ट या असाइनमेंट बना के सबमिट ना करना?
2: वेल, टीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। अगेन स्टूडेंट्स जो हैं अगर एक प्रॉम्प्ट देते हैं, लेकिन ये है कि पता चल जाता है कि कौन सी असाइनमेंट जो है वो AI के थ्रू उन्होंने की है और कौन सी असाइनमेंट जो है जिस उसमें उनका अपना इनपुट है। मैं स्टूडेंट्स को इनकरेज करती हूँ कि AI का इस्तेमाल करें, लेकिन पॉजिटिव वे में करें, उसकी प्रॉम्प्ट्स प्रॉपर तरीके से देना सीखें। ऐसा ना हो कि AI एक टाइम पे आपको कंट्रोल कर रहा हो। AI इज जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर। एक कैलकुलेटर हमारी जिंदगी आसान बनाता है, हमारी कैलकुलेशंस जो है वो मिनटों में कर देता है। सेम इज द केस विद AI। जो चीज, जो पैराग्राफ हमने लिखना है तकरीबन आधे घंटे में, वो वाला काम 2 मिनट में AI कर रहा है। लेकिन ये है कि اتنا عادی مت بنا لیں اے آئی کو کہ اے آئی کے اوپر ہی آپ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں, آپ کی جو انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز ہیں وہ اے آئی کے ہاتھ میں چلی جائیں اور آپ کو سوچنا اور لکھنا جو ہے بوجھ لگے. سو ہیلپ لیں لیکن اتنی نہ لیں کہ آپ ڈیپینڈنٹ اس کے اوپر ہو جائیں.
1: اور میم اے آئی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پلیجرائزڈ کام بھی بہت بڑھ گیا ہے. تو آپ کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ اسٹوڈینٹس آپ کو پلیجرائزڈ کام بنا کے سبمٹ کرواتے ہیں, لکھ کے دیتے ہیں اسٹوریز یا آپ کے پاس ریلز یا شارٹ فلمز یا ڈاکیومینٹریز جو ہیں وہ پلیجرائزڈ آتے ہیں؟
2: ویل کوشش تو کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ دے ٹرائی دیئر بیسٹ, لیکن یہ ہے کہ بینگ ٹیچرز ہم بھی ان کے استاد ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا چیز اے آئی سے جنریٹ کی گئی ہے. اب تو اے آئی سے جو چیک کرنے والی پلیجرزم چیک کرنے والے بہت سارے سافٹ ویئرز بھی ایسے آ گئے ہیں جس سے ٹیچرز چیک کر لیتے ہیں کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ہے یا یہ خود سے لکھا گیا ہے جو بھی اسائنمنٹ بچوں نے کی ہے. سو اس پہ پتہ چل جاتا ہے. ہم بچوں کے کوئزز لیتے ہیں, ٹیسٹ لیتے ہیں جس میں ظاہر ہے ان کے ہاتھ میں موبائل فونز نہیں ہوتے, اے آئی سے ریلیونٹ کوئی سورس نہیں ہوتا, تو اس پہ پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ خود سے کتنا کیپیبل ہے لکھنے کے لیے. جیسے میرے پاس اس وقت ایک کورس ہے رائٹنگ فار فلم, تو اس میں ساری کریٹو رائٹنگ ہے. سو اے آئی جنریٹڈ جب میرے پاس کہانی آتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے. اسی لیے میں بچوں کو انکریج کرتی ہوں کہ بے شک آپ اپنی فیوریٹ لینگویج میں لکھیں جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں اس پہ لکھیں تاکہ آپ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں اے آئی پہ. سو کنٹرول ہم لوگ کر لیتے ہیں, الحمدللہ اسٹوڈینٹس بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں بات کو, وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہاں انہوں نے اے آئی پہ مکمل ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا, اس لیے وہ خود سے بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی رائٹنگ کو بہتر بنائے. سو اے آئی نے ہمیں اتنا باڈر نہیں کیا ابھی تک, الحمدللہ معاملہ کنٹرول میں جا رہا ہے.
1: ہاں دیٹس ریلی گریٹ. اور میم ایک ایکسپشنل ایجوکیٹر ہوتے ہوئے اور ایک ایکسپشنل ٹیچر ہوتے ہوئے آپ کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ابھی اکیڈیمیا میں ہر حال میں انٹروڈیوس کروانی چاہیے تاکہ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ بیونڈ باؤنڈریز جو ہیں وہ چیزوں کو لے کے چل سکیں؟
2: سب سے پہلے تو میں ہر کسی کے لیے, جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کو میں یہی کہوں گی کہ ہم ایک سرٹن لیول پر جب سمجھتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے ہیں تو وہیں پہ ہماری لرننگ کا سلسلہ رک جاتا ہے. ایک تو ہمیشہ اپنے آپ کو ہم سمجھیں کہ نہیں ابھی ہم مکمل نہیں ہوئے, دیر سم اسپیس لیفٹ ان اس, ابھی ہم نے سیکھنا ہے. تو جب یہ ایٹیٹیوڈ ہمارے اندر آئے گا تو ہمارے اندر سیکھنے کی لگن جاری رہے گی اور ہم ایک جگہ پہ رکیں گے نہیں. اینڈ سیکنڈلی اگر میڈیا کے حوالے سے میں بات کروں تو میرا خیال میں ہم جب کورسز کو ریوائز کرتے ہیں, روڈ میپس کو ریوائز کرتے ہیں, تو نئی ٹیکنالوجیز کو دیکھتے ہوئے, نئے انٹروڈکشنز کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان کو انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے روڈ میپس میں. تاکہ جیسے ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے تو اب لوگ زیادہ ڈیپینڈنٹ فلمس کے لیے, نیوز کے لیے ڈیجیٹل میڈیا پہ ہو گئے. سو اس طرح کے کورسز زیادہ انٹروڈیوس کروائے جائیں جو کہ اسٹوڈنٹس کو آگے روزگار فراہم کریں, اور اگر اسٹوڈنٹ کو امپلائمنٹ ایک پروفیشن کے اندر نظر آئے گی تو وہ زیادہ اس کو اڈیپٹ کرے گا اور زیادہ خوشی سے اس کو سیکھے گا. تو میرا خیال میں اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے.
1: اور اتنے خوبصورت پیغام کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اہتمام کر رہے ہیں, اس سے زیادہ اچھا اور اس سے بہترین کیا ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ مس یکشی آپ کا اسٹوڈیو میں آنے کے لیے اور فیکلٹی آر کا حصہ بننے کے لیے, اور اتنے مزے کی اتنی اچھی اتنی انفارمیٹیو گفتگو کرنے کے لیے, کیونکہ میں نے اسے بہت کچھ سیکھا اور مجھے امید ہے کہ میرے سامعین نے بھی بہت سیکھا ہوگا.
2: تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر, اور بہت اچھا لگا آپ سے آج بات کر کے.
1: سو لسنرز ہم ان شاء اللہ نیکسٹ ویک دوبارہ کنیکٹ کریں گے. آپ سنتے رہے ایف ایم 92.6 پروگرام فیکلٹی آر کے ساتھ, میں ہوں مریم ارشاد, لیکچر فیکلٹی آف میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

0: की ताजगी का सफर तय कीजिए। यूसीपी की दुनिया के साथ, तो सुनते रहिए
1: سيد الأولين والآخرين
0: FM 92.6.

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP की दुनिया.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिस्निंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस,

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 यूसीबी की दुनिया।
1: कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहीं, फिर के सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6।

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हर गिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: ट्वेंटी फोर सेवन ओनली ऑन FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP Ki Duniya.
1: आप सुन रहे हैं हमारी आवाज़, हमारी पहचान FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

0: Admissions open for Fall 2026. Create, communicate and inspire with Faculty of Media and Mass Communication, University of Central Punjab. We are offering MS Film and Digital Media, MS Advertising in PR, MPhil Media and Communication. We are also offering different scholarships for UCP alumni, 75% fee concession on 3.8 CGPA, 50% fee concession on 3.5 CGPA, 25% fee concession on 3.0 CGPA. Merit scholarships are also available. 75% fee concession on 3.8 CGPA, 50% fee concession on 3.6 CGPA, and 50% fee concession for teachers and media professionals. So what are you waiting for? Contact us at 080-000-827 or apply on admissions@ucp.edu.pk. Faculty of Media and Mass Communication, University of Central Punjab.
1: Ek naya andaaz,
2: ek nayi soch,
1: ek nayi pehchan,
2: ek nayi lagan.
1: UCP में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
1: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
1: यूसीपी की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।
3: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 92.6। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चरर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर्ट के साथ, जिस प्रोग्राम में हम बात करते हैं नेटवर्किंग की, स्किल्स की, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज की, एकेडेमिया की, फैकल्टी की, बहुत सारे इवेंट्स की, एंटरप्रेन्योरशिप की, न्यू ट्रेंड्स की एंड सो ऑन। और आज का जो प्रोग्राम है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो गेस्ट, वो ना सिर्फ एक एक्सेप्शनल एजुकेटर हैं बल्कि एक इंस्पिरेशन है अपने स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनका लेक्चर चाहे वो प्रैक्टिकल हो या थ्योरेटिकल हो, वो खुद में एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। और अगर ये कहा जाए कि वो हमारी फैकल्टी की बहुत स्वीटेस्ट और हम्बल टीचर हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। ओवरऑल शी इज जेम ऑफ अ पर्सन, नन अदर देन मिस यक्षी सलीम।
4: थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी मरियम, कैसी हैं आप? ठीक है,
3: ठीक हूँ। मिस यक्षी सलीम प्रिंसिपल लेक्चरर हैं फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में। आपका मैम टीचिंग करियर स्टार्ट कहाँ से हुआ, क्या इंस्पिरेशन थी?
4: वेल, टीचिंग करियर अब तो मुझे 9 साल से ज्यादा हो गए और ऑलमोस्ट 10 साल का अरसा जो है मुकम्मल होने को है। और इट वॉज एन एक्सीडेंटल एक्सपीरियंस, आई वॉज वर्किंग एट दुनिया टीवी और वहाँ होते हुए ही मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ एकेडेमिया की तरफ भी मुझे कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए। आई वॉज ऑलवेज विलिंग टू शेयर माई नॉलेज विद द स्टूडेंट्स, तो मैंने वहाँ होते हुए ही ऐसे ही ट्राई किया एंड आई गॉट सेलेक्टेड एट यूसीपी। और तब से ये जो एकेडेमिया का सफर है ये शुरू हुआ और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जारी है।
3: अच्छा मैम, जब फील्ड सेलेक्ट करते हैं तो यूजुअली बड़ी कंफ्यूजन रहती है और स्टूडेंट्स कहते हैं, जो भी सेकंड ईयर के बाद फ्री हो रहे होते हैं बच्चे, वो कहते हैं कि हमने या तो मेडिकल करना है या इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि मैट्रिक के बाद मैंने देखा है कि बहुत प्रेशर होता है टू बी अ डॉक्टर और एन इंजीनियर। तो क्या आप पे ऐसा कोई प्रेशर था आपकी फैमिली की तरफ से, या आपने कभी सोचा था कि मैं मीडिया ही ज्वाइन करूंगी और मैंने मीडिया में ही एज अ फैकल्टी मेंबर अपनी एकेडेमिया में आके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है?
4: वेल, बिल्कुल, जैसे मोस्ट ऑफ द यूथ के ऊपर प्रेशर एक होता है, मुझ पर भी था। माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू बी अ डॉक्टर, और लेकिन मैं क्लियर थी अपने हवाले से कि मैंने क्या करना है जिंदगी में। मुझे कलर्स बहुत पसंद थे, मुझे फिक्शन पसंद थी, मुझे नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता था, मुझे कहानी लिखना अच्छा लगता था। और मुझे, मैं ये तो नहीं जानती थी कि मीडिया क्या है, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं ऐसा ही कुछ करना चाहती हूँ। सो जैसे ही मैट्रिक का सफर खत्म हुआ, इंटरमीडिएट में गए, इंटरमीडिएट में मेरे सब्जेक्ट साइकोलॉजी से रेलिवेंट थे और इस तरह से आर्ट से ही रेलिवेंट थे, और उसके बाद भी मैंने सोचा कि भाई जो चीज मैं करना चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा। तो फिर मैंने थोड़ा सा डिग आउट किया, रिसर्च की डिफरेंट डिसिप्लिन्स के हवाले से, मुझे मैथ्स कम्युनिकेशन का पता चला एंड फौरन ही वो क्लिक किया मेरे माइंड में कि हाँ ये वो चीज़ है जहाँ पे मुझे आगे जिंदगी में चलना है। सो मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया और मैथ्स कम्युनिकेशन में मैंने अप्लाई किया एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड एट माई यूनिवर्सिटी। और उसके बाद से आप कहते हो ना कि एक आप मेंटली سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہاں یہ چیز ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں ہمیشہ سے اور ابھی بھی میں کر رہی ہوں اور فیوچر میں بھی انشاءاللہ میں یہی کرتی رہوں گی. سو وہ سیٹسفیکشن الحمدللہ میرے ساتھ ہے. اور جب میرے پیرنٹس نے مجھے خوش دیکھا تو وہ بھی میری بات سے کنوینس ہو گئے اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے.
3: اور دیٹس ریلی گریٹ. اور جیسے آپ بتا رہی تھی کہ 9 ایئرس سے آپ یو سی پی کے ساتھ فیکلٹی آف میڈیا اینڈ ماس کمیونیکیشن کے ساتھ لنکڈ ہیں, تو یہ 9 سال کا سفر کیا تھا؟
4: یہ بہت اچھا لرننگ ایکسپیرینس تھا. اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس بھی آئے, اس کے اندر بہت سارے آپ کے بہت سارے دن ایسے بھی گزرے کہ جس دن آپ بہت خوش ہیں آپ کو بہت اچیومنٹ لگتی ہے, اس میں ایسے بھی دن آئے جس دن آپ لو فیل کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ شاید آج میں نے گین نہیں کیا یا میں زندگی میں تھوڑا پیچھے جا رہی ہوں. لیکن میرے خیال میں یہ زندگی کا حصہ ہے, یہ آپ کو اچھے دن بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں اور ہر دن آپ کچھ نیا سیکھتے ہیں. ہم اگر اکیڈیمیا میں ہیں ہم سکھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو تو ہماری اپنی بھی ساتھ ساتھ ویسے ہی لرننگ ہوتی ہے. جیسے جیسے نئی ٹیکنالوجیز آتی ہے تو ٹیچر جب ایک کلاس میں جاتا ہے تو جہاں وہ بچوں کو سکھا رہا ہوتا ہے اس کی اپنی بھی لرننگ ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. تو الحمدللہ دی ایکسپیرینس از گوئنگ ریلی ویل.
3: میم جیسے ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ آپ کا 9 سال کا ایکسپیرینس تھا, بہت لرننگ بھی رہی اور کچھ نہ کچھ آپ نے اوپر اپس اینڈ ڈاؤنس بھی دیکھے, سیکھا بھی سکھایا بھی, کوئی ایسا ٹائم جو آپ کو بہت زندگی کی ایک ایسی امپورٹنٹ میموری بن گئی ہے جسے آپ کہتی ہیں کہ شاید میں کبھی باہر نہیں آ سکتی یا شاید اس سے سیکھا بھی اور اسے اس ٹائم سے باہر نکلنا یا اس ٹائم کے بارے میں سوچ کے آپ کو گوز بمپس بھی ہوتے ہیں؟
4: ویسے تو بہت ساری میموریز ہیں لیکن ہاں جو آپ کے کریئر کے سٹارٹ کے چیلنجز ہیں وہ ہمیشہ آپ کو یاد رہتے ہیں. مجھے یاد ہے جب ہم یہی FM 92.6 کو لانچ کر رہے تھے تو ایک ریڈیو کو لانچ کرنے کا میرا پہلا تجربہ تھا. میں نے اپنی یونیورسٹی کے ریڈیو میں تو بہت کام کیا تھا لیکن یہ ہے کہ ایک پورے ریڈیو سیٹ اپ کو سٹارٹ کرنا ایک آل ٹوگیدر ایک ڈفرنٹ لرننگ ایکسپیرینس تھا. جس دن مجھے یاد ہے ہم نے لانچ کرنا تھا ہم یہاں لیٹ نائٹ تک رکے اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے پورے مارکیٹنگ کا جتنی بھی ہم نے ٹولس اپلائی کرنے تھے یہاں پر وہ ہم نے ساری چیزیں منگائی, پرنٹ آؤٹس منگائے, پوری جو فلیکسز تھے جو ہم نے وہاں ڈسپلے کرنے تھے وہ تھے اور اگلے دن آڈیٹ

0: मैम, वो ऐसी क्या बात है जो आपको लगता है हमारी फैकल्टी की बाकी फैकल्टी से बहुत डिफरेंट है?
1: हमारी फैकल्टी में सब लोग मेहनती हैं। हमारी फैकल्टी में क्योंकि हम मीडिया के लोग हैं और मीडिया में गुंजाइश नहीं होती कि हम डिले से चलें। हर चीज़ जैसे खबर ब्रॉडकास्ट करनी है तो वो टाइमली करनी है, तो हम सारे फैकल्टी मेंबर्स को आदत है कि एक डेडलाइन जो हमें दे दी जाती है, हम चाहे सोचें भी कि अगर इसको डिले करना है तो हमारी शायद कह लें कि एक ट्यूनिंग इस किस्म की हुई हुई है प्रोफेशन में रह के, हम वो डिले कर नहीं पाते। तो एक सबसे यूनिक और सबसे अच्छी बात यह है कि मीडिया फैकल्टी में जो भी टास्क असाइन किया जाता है वो सबसे पहले होता है और डेडलाइंस को सारे टीचर्स जो हैं वो बड़ी डेडिकेटेडली मीट करते हैं।
0: और अब गुफ्तगू का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, अभी चलते हैं छोटे से ब्रेक पे। आप सुन रहे हैं FM 92.6 प्रोग्राम फैकल्टी आर। मैं हूं मरियम मिश्रा, लेक्चरर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले मिस यक्षी से, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, कैसा रहा उनका टीचिंग एक्सपीरियंस, उन्होंने कैरियर कैसे चूज किया और किस तरह से फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन को देख रही हैं वो इन फ्यूचर। अब मैं मैम अगर आपसे बात करूँ, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे डेडलाइंस के बारे में, कि डेडलाइंस को मीट करना इज वेरी लाइक चैलेंजिंग, तो ऐसा कौन सा चैलेंजिंग टास्क है जो भी आप परफॉर्म कर रही हैं जिसमें आपको डेडलाइंस मीट करना खुद में ही एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी भी लगती है, चैलेंज भी लगता है और खुद में ही एक बहुत बड़ा एडवेंचर भी लगता है कि इसको हर हाल में करना है टाइम से?
2: वेल, फैकल्टी का जो स्ट्रेटेजिक प्लान है उसको फॉलो करना और उसकी डेडलाइंस को मीट करना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है। अभी जो 10 ईयर्स का मेरा करियर है उसके अंदर तकरीबन 2 साल पहले मुझे जिम्मेदारी दी गई थी और इसमें मैं अगर देखूँ तो हम साल पहले ही फैकल्टी के कुछ टारगेट्स डिफाइन कर देते हैं कि हमने कौन से मंथ में कौन सा टारगेट अचीव करना है। उसमें रिसर्च के टारगेट्स भी हैं, उसमें हमारी उसमें पब्लिकेशंस के टारगेट्स भी हैं, उसके अंदर हमारी कम्युनिटी अवेयरनेस के टारगेट्स हैं, ग्लोबलाइजेशन के हैं, एकेडमिक इनिशिएटिव्स हैं। सो हर मंथ जो हमने डिफाइन किया हुआ है उसी मंथ में वो सारे काम करना और उन डेडलाइंस को मीट करना, वो टास्क परफॉर्म करना, वो टारगेट अचीव करना इटसेल्फ बहुत चैलेंजिंग है। बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स बल्कि पूरी फैकल्टी की सपोर्ट इसमें मेरे साथ होती है। जिस फैकल्टी मेंबर को आज तक जो भी टास्क असाइन किया उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म किया। हाँ, लेकिन ये कि इनकी रिपोर्ट्स कंपाइल करना और उसके बाद फिर वो सारा कुछ कंपाइल करके एक हमारी हर क्वार्टर के एंड में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है प्रोडक्टर साहब के साथ जिसमें हम अपनी प्रोग्रेस उनको बताते हैं। सो वो सारी डॉक्यूमेंटेशन करना और टाइमली सारे काम को परफॉर्म करना जो है इटसेल्फ बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन साथ ही साथ ये एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस भी है। मैं अगर अपनी जाती लर्निंग के हवाले से बात करूं तो इसमें जो बजट मैनेजमेंट है वो मुझे आई। इसके अलावा मैंने अपने टास्क जो जिंदगी के थे उनको प्लान करना शुरू किया, मेरी लाइफ ज्यादा डिसिप्लिन हो गई। और इसके अलावा जैसे हम स्ट्रेटेजिक टारगेट्स डिफाइन करते हैं इसी तरह मैंने भी ये

0: सीखा कि अपने कुछ टारगेट्स अगर जिंदगी में डेली बेसिस पे भी अगर हम डिफाइन कर लें तो हमारा दिन बहुत प्रोडक्टिव गुजरता है. सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस.
1: और मैम, अगर लिसनर्स ये जानना चाहें कि स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे?
0: जैसे स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं, इस तरह स्ट्रेटेजिकली हम एक साल का प्लान बना लेते हैं कि हमने नई स्ट्रेटेजीज अपनी फैकल्टी को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज अपनानी है, हमने एकेडमिक इनिशिएटिव्स कौन से लेने हैं, तालीम को कैसे बेहतर बनाना है, अगर कहीं हम लैक कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें इक्विपमेंट नया चाहिए, हमने अपनी लैब्स को अपग्रेड करना है, हमने अपने टीचर्स की ट्रेनिंग करनी है, हमने स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करनी है, तो वो सारी प्लानिंग जो है हमारा जो मार्च और अप्रैल का महीना है उसमें हम बैठ के ये प्लानिंग कर लेते हैं. और इसमें हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना बजट हमें दरकार होगा रिसोर्सेज के लिए, जितने भी उसके लिए हमें इक्विपमेंट चाहिए या जो भी हमें उसकी नेसेसिटीज हैं वर्कशॉप्स की ट्रेनिंग्स की, तो उसको हम प्लान आउट करके एक टाइमलाइन क्रिएट कर देते हैं. एक एक्सेल शीट के ऊपर हम टाइमलाइन क्रिएट कर देते हैं मंथ वाइज, ताकि हमें अंदाजा हो कि हमने कौन से मंथ में क्या काम करना है. जब प्लान हमने किया होता है हमें पता होता है कि इतना बजट है, हम कितना इन्वेस्ट करेंगे, कितना बच सकता है, तो हम ज्यादा आसानी से उन टारगेट्स की तरफ जा सकते हैं और ज्यादा आसानी से उन टारगेट्स को हम मीटअप कर सकते हैं. सो स्ट्रेटेजिक प्लान जब से हमने बनाना शुरू किया है तब से मैं देखती हूँ कि हमारी फैकल्टी की प्रोग्रेस जो है वो ज्यादा हो गई है. अगर मैं बात करूँ रिसर्च के हवाले से, तो रिसर्च में ज़ाती तौर पर पहले ऐसा होता था कि अगर किसी ने पब्लिकेशन करनी है तो फैकल्टी मेंबर्स करते थे, लेकिन अब चूंकि टारगेट है कि आपने लेट्स सपोज 10 पब्लिकेशंस हैं वो करनी ही करनी है, तो उस टारगेट को मीट करने के लिए आप 7 तक तो कम से कम जाते हैं. और बाज़ूकात ऐसा भी होता है, जो हमारा पिछला स्ट्रेटेजिक प्लान था उसमें हमने अपने टारगेट से बहुत ज्यादा अचीव किया था. हमारा टारगेट तकरीबन 26 रिसर्च पब्लिकेशंस का था, जिसमें कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशंस थी, पब्लिकेशंस थी, इंपैक्ट फैक्टर जर्नल थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 91 का टारगेट अचीव किया. सो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक प्लान जो था वो 2023-24 का था, जो कि जिसमें हमारी फैकल्टी ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की.
1: दैट सच एन अचीवमेंट. बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के कि हमने एक टारगेट सेट किया और फिर हमने उस टारगेट को तोड़ के खुद एक नया टारगेट. अच्छा मैम, जो स्ट्रेटेजिक प्लान है क्या इसका कोई फ्लो चार्ट, मैंने जो समझा अभी तक यही है कि एक फ्लो चार्ट है जिसके मुताबिक हमने क्या क्या कैसे कैसे करना है, प्लानर हमारा बन गया और हम उस तरह कर रहे होते हैं, तो क्या इसके कुछ पिलर्स हैं जिसके अंडर आप चीजों को अचीव, जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं?
0: बिल्कुल, इसमें डिफाइंड कुछ पिलर्स हैं, जैसे एक्सपैंड एंड स्ट्रेंथन एकेडमिक इनिशिएटिव्स हैं, उसके अंदर हम लोग अपनी लैब्स को अपडेट करते हैं, हम टीचर्स की हायरिंग करते हैं, हम इसके अंदर अपनी टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं, स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करते हैं. कोई नया एकेडमिक इनिशिएटिव है, जैसे कि इस साल हम कम्युनिकेशन गाला ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, वो हमने किया. इस साल हमने एक नई ट्रेनिंग जो है AI को इनकॉर्पोरेट करते हुए फैकल्टी मेंबर्स की ट्रेनिंग करवाई, ताकि AI को पॉजिटिव वे में वो यूज करके अपने स्टूडेंट्स को जो है हेल्प आउट कर सकें, कि वो AI का इस्तेमाल करते हुए एकेडमिकली अपने जो लर्निंग है उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास रिसर्च का टारगेट होता है, जिसमें डिफाइंड होता है कि स्टूडेंट्स कितनी पब्लिकेशंस करेंगे, टीचर्स कितनी करेंगे, उसके तहत हम लोग रिसर्च ग्रुप बनाते हैं. और रिसर्च ग्रुप में यह है कि जिन लोगों को रिसर्च में जो वीक हैं, तो जो स्ट्रांग रिसर्चर्स हैं वो उन्हें गाइड करते हैं कि वो अपनी रिसर्च को, जो टीचर्स वीक हैं वो अपनी रिसर्च को बेहतर कैसे कर सकते हैं. यूजुअली ऐसा होता है कि जो प्रोफेशनल ट्रैक के टीचर्स हैं वो प्रोफेशनली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो जब हम ग्रुप्स बनाते हैं तो उससे यह होता है कि जो प्रोफेशनली स्ट्रांग टीचर्स हैं वो रिसर्चर्स को अपनी स्किल्स जो हैं शेयर करते हैं, और रिसर्चर्स जो हैं वो प्रोफेशनली स्ट्रांग टीचर्स को अपनी जो स्किल्स हैं शेयर करते हैं, जिससे एक म्यूचुअल लर्निंग का प्रोसेस जो है वो जारी रहता है. इसके अलावा हमारे पास थर्ड पिलर जो है उसमें स्टूडेंट जो ग्रेजुएट्स हैं हमारे, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के लिए हम काम करते हैं, हम रिक्रूटमेंट ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करते हैं. इसके अलावा हम इंडस्ट्रियल लिंकेजेस को स्ट्रांग करते हैं, हम इंडस्ट्री से लोगों को इनवाइट करते हैं कि वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें, उन्हें इंडस्ट्री में होने वाली हैपनिंग्स के हवाले से बताएं, और जो इंडस्ट्री में जब हमारा बच्चा जाएगा तो उससे क्या एक्सपेक्टेशन की जाएगी इसके हवाले से उनको बताएं. तो बहुत सारी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं बच्चों की, और उनको CV डेवलप करने में हेल्प आउट किया जाता है. इसके अलावा हमारी फैकल्टी का एक और 6 पिलर है, जिसमें कम्युनिटी अवेयरनेस के हवाले से हम काम करते हैं. क्योंकि हमारा ताल्लुक मीडिया से है, तो हम उसमें जो हमारे रेडियो के प्रोग्राम्स हैं, हमारे टेलीविजन जो स्टूडियो है उसके प्रोग्राम्स हैं, उसके कुछ टारगेट सेट हैं कि हमने कम्युनिटी के लिए क्या सर्व किया है, तो कम्युनिटी के लिए हम स्पेशली उसमें प्रोग्राम्स प्रोड्यूस करते हैं. इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स को एक टास्क असाइन किया जाता है कि स्टूडेंट्स आजकल जैसे डिजिटल मीडिया का दौर है, तो स्टूडेंट्स भी जो हैं कुछ ना कुछ कोई रील्स बनाएं, कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाएं, ताकि वो भी जब डिजिटल मीडिया पे जाएं तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट प्ले करें हमारी सोसाइटी में. सो ये सारे के सारे जो 6 पिलर्स हैं इनके तहत पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान बनता है, जिसके अंदर से सारे काम जो है हम पूरे एक साल में करते हैं.
1: और ये सबके सभी खुद में एक बहुत बड़ा टारगेट है, उनको अचीव करना, चीजों को लेकर जाना, स्पेसिफिकली ये देखना कि स्टूडेंट्स जो यहाँ से ग्रेजुएट हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट क्या है, और कितने बच्चे जो है वो प्रोफेशनल लाइफ में हैं, कितने एकेडमिया को फर्दर परस्यू कर रहे हैं. उसके अलावा जैसे आप बता रही थी कि डिफरेंट तरह के इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करवा रहे होते हैं. सो ये सच में एक अचीवमेंट है जिसको आप जैसे देख रही हैं, और जितनी इस पे मेहनत हो रही है वो सुन के ही मैं बहुत वो हैरान भी हो रही हूँ और खुशी भी हो रही है कि FMMC हर तरह से टारगेट को मीट करने के लिए अपनी एक टीम के साथ एक बेहतर तरीके से काम कर रहा है और कोशिश की जा रही है कि बेहतर से बेहतर हम परफॉर्म करें. सो मैम, जैसे अभी आप स्ट्रेटेजिक प्लान की बात कर रही थी, तो क्या हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी हम इवेंट्स जो रख रहे होते हैं वो अभी स्किल्स एनहांस करने के लिए या उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, उनके टारगेट्स जो वो मीट करना चाहते हैं उसके लिए कोई ऐसा इवेंट है जिससे वो सीख सकते हैं?
0: वेल, बिल्कुल. हर साल हम कुछ ना कुछ नया करते हैं और इस साल हमने सोचा कि हम स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिकेशन गाला ऑर्गेनाइज करते हैं. कम्युनिकेशन गाला एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर हमने स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी कि वो मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर कम्युनिकेशन रिलेटेड जो है स्किल्स वो अपनी डिस्प्ले करें. इसमें सिर्फ मीडिया के स्टूडेंट्स नहीं है, इसमें पूरी UCP के स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ये इवेंट जो है इसमें रील्स का कॉम्पिटिशन है, इसमें न्यूज एंकरिंग का कॉम्पिटिशन है, इसके अंदर TVC का कॉम्पिटिशन है, इसमें पोस्टर मेकिंग का कॉम्पिटिशन है. ये वो कॉम्पिटिशन हैं जो कि स्टूडेंट्स यूजली अपने शौक को पूरा करने के लिए भी कर रहे होते हैं, नो मैटर उनका ताल्लुक फार्मेसी से है, इंजीनियरिंग से है, किसी भी डिसिप्लिन से है. लेकिन कम्युनिकेशन की जो स्किल है और कम्युनिकेशन बेस्ड आर्ट हर इंसान में होता है. सो अपनी इस स्किल को, अपने इस आर्ट को इन्हांस करके अगर वो किसी कम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें और विन करें तो स्टूडेंट को एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है और वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होती हैं. तो इसीलिए हमने सोचा कि तमाम UCP के स्टूडेंट्स के लिए हम ये एक इनिशिएटिव रखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल स्ट्रेटेजिक प्लान में हमने इनिशिएटिव रखा है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स जो है इससे बेनिफिट लेंगे.
1: ऐसे ही है, और मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं किसी भी तरह से कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करें. अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा जो हमारे प्रोफेशनल स्टडीज के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो स्पेसिफिक फील्ड में जो है वो एक्सपर्टीज ले रहे हैं, स्पेसिफिकली उनकी स्पेशलाइजेशन है या वो MPhil में आ रहे हैं, उनके लिए फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन ऐसा क्या ऑफर कर रहे हैं जो बाकी मीडिया फैकल्टीज नहीं ऑफर कर रही?
0: वेल, सबसे स्ट्रॉन्ग चीज का जो मैं जिक्र यहाँ पे करूंगी मास्टर्स प्रोग्राम के हवाले से, वो उसका रोड मैप है. जैसा रोड मैप यहाँ फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन ने डिजाइन किया है, इस तरह का रोड मैप आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा. अप टू डेट यहाँ पे कोर्सेज हैं, रिसर्च भी इंक्लूडेड है, प्रोफेशनल और टेक्निकल स्किल्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं. तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो ये है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो है मास्टर्स प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है. इसके अलावा सेकंड चीज की तरफ अगर मैं आऊं तो वो इसमें ऑफर की जाने वाली स्कॉलरशिप्स हैं. अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको 50% स्कॉलरशिप दी जा रही है, और अगर आप इसके अलावा अगर आप अच्छे आपके ग्रेड्स हैं आपके BS में तो उसके हवाले से अपनी स्कॉलरशिप्स हैं. इनकी सारी डिटेल्स जो है UCP के वेबसाइट पर मौजूद हैं, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं हमारे मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए वो वेबसाइट से कंसल्ट कर सकते हैं. सो बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है, एंड आई एम श्योर जो भी जो स्टूडेंट्स इसका हिस्सा हैं और अगर कोई स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा लेना भी चाहते हैं, इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, वो अगर इसका हिस्सा बनेंगे तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा.
1: अच्छा, मैं तो बात करके बहुत मजा और बहुत इंजॉय कर रही हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है. सो यही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं. आप लोग सुन रहे हैं FM 92.6 प्रोग्राम फैकल्टी आर. मैं हूँ मरियम इरशाद, लेक्चरर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन.

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। और आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट हैं प्रिंसिपल लेक्चरर मिस यक्षी सलीम, फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। और अभी हम उनसे बड़े मजे मजे की गुफ्तगू कर रहे थे और उनसे मैं पूछ रही थी कि प्रोफेशनल लाइफ और प्रोफेशनल स्टडीज जो है वो किस तरह से मैनेज करते हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स। तो मैम, मुझे ये बताइएगा कि जो प्रोफेशनल स्टडीज के स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल ट्रैक के स्पेसिफिकली, उनके लिए इस फील्ड में आने के लिए क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो उनको बहुत जरूरी रखनी चाहिए कि जब वो इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको अपने आप को इस स्पेसिफिक वे में जो है वो हर तरह से अचीवेबल, टारगेट अचीवेबल भी बनाना है और उनको अपने आप को इस तरह से वेल ग्रूम करना है।
2: सबसे पहली बात तो मैं उन्हें कहूंगी कि डेडिकेशन स्ट्रांग करें। अगर आप मीडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, चाहे आप फिल्म मेकिंग में जाना चाहते हैं, चाहे आप ब्रॉडकास्टिंग के अंदर जाना चाहते हैं, आपको अपनी डेडिकेशन स्ट्रांग करनी पड़ेगी। आप डेडिकेटेड हैं अपने प्रोफेशन की तरफ तो ही आप आगे बढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे, डेडलाइंस को मीट कर सकेंगे। क्योंकि अगेन कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिंदगी में जहां पर डेडलाइंस और जहां पर आपकी मौजूदगी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और एंड मीडिया इज वन ऑफ देम। सो जब भी आपने इंडस्ट्री में जाना है, यू हैव टू बी देयर। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिविटीज को जो है वो जिंदगी से निकाल दें, वो आपको बेहतर इंसान बनने में भी मदद देगा और आपको प्रोफेशनली भी ग्रो करने में मदद देगा। सो इसलिए ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि अपनी जिंदगी का अहम एक हिस्सा होना चाहिए। और तीसरी चीज ये कि अपने आपको अप टू डेट रखें, आपके इर्द गिर्द की हैपनिंग्स हैं, न्यूज जो है उनसे आपका ताल्लुक होना चाहिए, चाहे आप फिल्म मेकिंग में हैं या चाहे ब्रॉडकास्टिंग के अंदर हैं। अगर दुनिया में क्या हो रहा है, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है आपको नहीं पता और आपको जाके ऐसे ही प्रोफेशन में काम करना है तो आप मीट नहीं कर पाएंगे उस प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट्स को, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। सो अखबार पढ़ने की आदत डालें। और आजकल जैसे डिजिटल मीडिया का दौर है, आजकल हम देखते हैं कि खबरें हमें सोशल मीडिया के थ्रू ही ज्यादा मिलती हैं। सो सोशल मीडिया पर सिर्फ हमने स्क्रोलिंग नहीं करनी, हमने पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भी लेनी है और नॉलेज भी गेन करना है। मैं एक बात हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ क्लासेस में भी कि जितने अच्छे अल्फाज आप पढ़ते हैं वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाते हैं, वही अल्फाज कहीं ना कहीं से आपकी राइटिंग्स में, आपकी गुफ्तगू में झलकते भी हैं। सो अच्छा पढ़ें ताकि आप अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा लिखें।
1: अच्छा मैम, जैसे अभी बात कर रहे थे रीसेंट ट्रेंड्स की कि अभी सोशल मीडिया का टाइम पीरियड है और चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं, हम देखते हैं हर तरह से आपके पास डिफरेंट तरह की न्यूज भी आती है, हमारे पास फेक न्यूज बहुत ज्यादा आती है, इसमें मीडिया कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है?
2: देखिए, हर मीडियम के स्टार्ट में लोगों को टैकल करना जो है और इन्फॉर्मेशन को टैकल करना चैलेंजिंग होता है। हम मीडिया हिस्ट्री भी जब देखते हैं तो जब भी कोई मीडियम, किसी भी मीडियम का आगाज होता था तो हमें बहुत सारी थेरीज ऐसी देखने को मिलती हैं कि लोगों के लिए उसको अडेप्ट करना और बाद में उसको फिर मॉनिटर करना जो है वो बहुत चैलेंजिंग रहा। सेम इज द केस विद द सोशल मीडिया, क्योंकि अभी इसमें मॉनिटरिंग जो है उसके ऊपर काम किया जा रहा है तो फेक न्यूज का, जैसे आपने जिक्र किया, बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। उसमें यही है कि फैक्ट चेकिंग जो है, इजी फैक्ट चेकिंग जो है उसको पॉसिबल बनाया जाए। जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं वो तो इसको देख ही सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब हम मीडिया के स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, हम मीडिया का हिस्सा हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन लोगों को गाइड किया जाए जो कि इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। चेक कर लिया जाए न्यूज को, एक दफा फैक्ट चेकिंग कर ली जाए, हम ओरिजिनल वेबसाइट्स पर जा सकते हैं, ओरिजिनल सोर्सेज को देख सकते हैं और वेरिफिकेशन के बाद ही हम उसको अपने जो जाती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर शेयर करें, उसको डिसेमिनेट करें, ताकि गलत इन्फॉर्मेशन हम खुद ही गेट कीपिंग उसकी कर लें, हम लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंचाएं। सो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको अगर हम खुद देखें तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ये कंट्रोल हो जाएगी।
1: और मैम, जैसे AI का टाइम पीरियड है, हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स में, देखती हूँ कि यूजुअली स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प लेते हैं ChatGPT से और डिफरेंट अदर सॉफ्टवेयर से जिनको आप सिर्फ कमांड दे रहे हो और आप उनसे अपने लिए वीडियोज भी बना रहे हो। तो एज ए टीचर कितना चैलेंजिंग हो गया प्रोफेशनल ट्रैक के स्टूडेंट्स को टीच करना और उनको AI से हेल्प लेने का कहना, लेकिन AI की मदद से सबका सब प्रोजेक्ट या असाइनमेंट बना के सबमिट ना करना?
2: टीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। अगेन स्टूडेंट्स जो हैं अगर एक प्रॉम्प्ट देते हैं, लेकिन ये है कि पता चल जाता है कि कौन सी असाइनमेंट जो है वो AI के थ्रू उन्होंने की है और कौन सी असाइनमेंट जो है जिसमें उसमें उनका अपना इनपुट है। मैं स्टूडेंट्स को इनकरेज करती हूँ कि AI का इस्तेमाल करें, लेकिन पॉजिटिव वे में करें, उसकी प्रॉम्प्ट्स प्रॉपर तरीके से देना सीखें। ऐसा ना हो कि AI एक टाइम पे आपको कंट्रोल कर रहा हो। AI इज जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर। एक कैलकुलेटर हमारी जिंदगी आसान बनाता है, हमारी कैलकुलेशन जो है वो मिनटों में कर देता है। सेम इज द केस विद AI। जो चीज, जो पैराग्राफ हमने लिखना है तकरीबन आधे घंटे में, वो वाला काम 2 मिनट में AI कर रहा है। लेकिन ये है कि اتنا عادی مت بنا لیں اے آئی کو کہ اے آئی کے اوپر ہی آپ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں, آپ کی جو انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز ہیں وہ اے آئی کے ہاتھ میں چلی جائیں اور آپ کو سوچنا اور لکھنا جو ہے بوجھ لگے. سو ہیلپ لیں لیکن اتنی نہ لیں کہ آپ ڈیپینڈنٹ اس کے اوپر ہو جائیں.
1: اور میم اے آئی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پلیجرائزڈ کام بھی بہت بڑھ گیا ہے. تو آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈینٹس آپ کو پلیجرائزڈ کام بنا کے سبمٹ کرواتے ہیں, لکھ کے دیتے ہیں اسٹوریز یا آپ کے پاس ریلز یا شارٹ فلمز یا ڈاکیومینٹریز جو ہیں وہ پلیجرائزڈ آتے ہیں؟
2: ویل کوشش تو کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ دے ٹرائی دیئر بیسٹ, لیکن یہ ہے کہ بینگ ٹیچرز ہم بھی ان کے استاد ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا چیز اے آئی سے جنریٹ کی گئی ہے. اب تو اے آئی سے جو چیک کرنے والی پلیجرزم چیک کرنے والے بہت سارے سافٹ ویئرز بھی ایسے آ گئے ہیں جس سے ٹیچرز چیک کر لیتے ہیں کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ہے یا یہ خود سے لکھا گیا ہے جو بھی اسائنمنٹ بچوں نے کی ہے. سو اس پہ پتا چل جاتا ہے. ہم بچوں کے کوئزز لیتے ہیں, ٹیسٹ لیتے ہیں جس میں ظاہر ہے ان کے ہاتھ میں موبائل فونز نہیں ہوتے, اے آئی سے ریلیونٹ کوئی سورس نہیں ہوتا, تو اس پہ پتا چل جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ خود سے کتنا کیپیبل ہے لکھنے کے لیے. جیسے میرے پاس اس وقت ایک کورس ہے رائٹنگ فار فلم, تو اس میں ساری کریٹو رائٹنگ ہے. سو اے آئی جنریٹڈ جب میرے پاس کہانی آتی ہے مجھے پتا چل جاتا ہے. اسی لیے میں بچوں کو انکریج کرتی ہوں کہ بے شک آپ اپنی فیوریٹ لینگویج میں لکھیں جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں اس پہ لکھیں تاکہ آپ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں اے آئی پہ. سو کنٹرول ہم لوگ کر لیتے ہیں, الحمدللہ اسٹوڈینٹس بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں بات کو, وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہاں انہوں نے اے آئی پہ مکمل ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا, اس لیے وہ خود سے بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی رائٹنگ کو بہتر بنائے. سو اے آئی نے ہمیں اتنا باڈر نہیں کیا ابھی تک, الحمدللہ معاملہ کنٹرول میں جا رہا ہے.
1: ہاں دیٹس ریلی گریٹ. اور میم ایک ایکسپشنل ایجوکیٹر ہوتے ہوئے اور ایک ایکسپشنل ٹیچر ہوتے ہوئے آپ کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ابھی اکیڈیمیا میں ہر حال میں انٹروڈیوس کروانی چاہیے تاکہ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ بیونڈ باؤنڈریز جو ہیں وہ چیزوں کو لے کے چل سکیں؟
2: ویل سب سے پہلے تو میں ہر کسی کے لیے, جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کو میں یہی کہوں گی کہ ہم ایک سرٹن لیول پر جب سمجھتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے ہیں تو وہیں پہ ہماری لرننگ کا سلسلہ رک جاتا ہے. ایک تو ہمیشہ اپنے آپ کو ہم سمجھیں کہ نہیں ابھی ہم مکمل نہیں ہوئے, دیر سم اسپیس لیفٹ ان اس, ابھی ہم نے سیکھنا ہے. تو جب یہ ایٹیٹیوڈ ہمارے اندر آئے گا تو ہمارے اندر سیکھنے کی لگن جاری رہے گی اور ہم ایک جگہ پہ رکیں گے نہیں. اینڈ سیکنڈلی اگر میڈیا کے حوالے سے میں بات کروں تو میرے خیال میں ہم جب کورسز کو ریوائز کرتے ہیں, روڈ میپس کو ریوائز کرتے ہیں, تو نئی ٹیکنالوجیز کو دیکھتے ہوئے, نئے انٹروڈکشنز کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان کو انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے روڈ میپس میں, تاکہ جیسے ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے تو اب لوگ زیادہ ڈیپینڈنٹ فلمز کے لیے, نیوز کے لیے ڈیجیٹل میڈیا پہ ہو گئے. سو اس طرح کے کورسز زیادہ انٹروڈیوس کروائے جائیں جو کہ اسٹوڈنٹس کو آگے روزگار فراہم کریں, اور اگر اسٹوڈنٹ کو امپلائمنٹ ایک پروفیشن کے اندر نظر آئے گی تو وہ زیادہ اس کو اڈیپٹ کرے گا اور زیادہ خوشی سے اس کو سیکھے گا. تو میرے خیال میں اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے.
1: اور اتنے خوبصورت پیغام کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں, اس سے زیادہ اچھا اور اس سے بہترین کیا ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ مس یکشی آپ کا اسٹوڈیو میں آنے کے لیے اور فیکلٹی آر کا حصہ بننے کے لیے, اور اتنے مزے کی اتنی اچھی اتنی انفارمیٹیو گفتگو کرنے کے لیے, کیونکہ میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور مجھے امید ہے کہ میرے سامعین نے بھی بہت سیکھا ہوگا.
2: تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر, اور بہت اچھا لگا آپ سے آج بات کر کے.
1: سو لسنرز ہم ان شاء اللہ نیکسٹ ویک دوبارہ کنیکٹ کریں گے. آپ سنتے رہے ایف ایم 92.6 پروگرام فیکلٹی آر کے ساتھ, میں ہوں مریم ارشاد, لیکچر فیکلٹی آف میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن.

0: मोबाइल डिवाइस की पीटीए से तस्दीक के मुतालिक जानने के लिए खरीदते वक्त सबसे पहले इसका 15 हिस्सों का IMEI नंबर *#06# डायल करके मालूम करें और फिर IMEI नंबर 8484 पर SMS करें या वेबसाइट से चेक कर लें कि ये डिवाइस पीटीए से तस्दीक शुदा है। PTA
1: 24/7 only on FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

Fun, entertainment, news, knowledge. 24/7 only on UCP FM 92.6. UCP की दुनिया.

0: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke din mein.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dhanyan.

अपनी एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

0: के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फहद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: Matched.6. नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमो की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

www.ucp.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya, FM 92.6.
1: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
2: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
3: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
1: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
4: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
4: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
5: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
6: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
7: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز UCP کی دنیا FM 92.6.